0: बहुत उदास है तेरिया कंदा रुदन कर कर सिलाबियां गईया ने। तेरिया कंदा रुदन कर कर सिलाबियां गईया ने। तेरे तन दे कपड़े पेपड़िया बण बण उतर रही ने। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। तेरी ममटी ऊपर पंछी बैठ राग बिरहा अलापदे ने। तेरी ममटी ऊपर पंछी बैठ राग बिरहा अलाप देने। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे बिना तेरे ताले तो लेके इसी तक चंगाले गए ने। हुण अगरबत्ती दी नहीं मिट्टी तूड़ दी हवांक आउंदी है। हुण अगरबत्ती दी नहीं मिट्टी तूड़ दी हवांक आउंदी है। डोगी गेट ते सिर सुट के सौंदा जा बुत्थी ऊपर चुक्की रोंदा है। डाकिया डाक सुटन वक्त शरबत जा चान उड़ीकदा है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। तेरे बंद देख तेनू बंद देख कोई किराए ले मंगदा कोई खरीदना लोचदा है। तेन बंद देख कोई किराए ले मंगदा कोई खरीदना लोचदा है। मैं त्रवक जांदी हाँ रोंदी हाँ तेनू पराए हाथ किवें सौंदे हाँ। मैं त्रवक जांदी हाँ रोंदी हाँ तेनू पराए हाथ किवें सौंप देवां। तू मेरे सुपनिया दा घर मेरे प्यार दा तू ही साक्षी है। तू मेरे सुपनिया दा घर मेरे प्यार दा तू ही साक्षी है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे पुत्र दा घर भी प्यारा मेरा अपना है ना पराया है। मेरे पुत्र दा घर भी प्यारा मेरा अपना है ना पराया है। उत्थे रह के मैनू अपनेपन वर्गा सुकून महसूस नहीं हुंदा। देश विदेशी बन पुत्र दा घर कुसा कुसा नहीं लगदा। देश विदेशी बन पुत्र दा घर कुसा कुसा नहीं लगदा। वो उदास रोशनियां दा घर होटल वांग वक्ती लगदा है। वो उदास रोशनियां दा घर होटल वांग वक्ती लगदा है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे जीते जी तक तू मेरा ही है मेरी ही मलकियत है। मेरे जीते जी तक तू मेरा है मेरी ही मलकियत है। मैं फिर धूप अते दीवे नाल तेरी आरती उतारनी है। कोसी कोसी धुप च बैठ पंछियां दा राग मल्हार सुनना है। कोसी कोसी धुप च बैठ पंछियां दा राग मल्हार सुनना है। अम्बरी छत नीचे तेरी निग्गी बुकल च आखरी नींद सोना है। अम्बरी छत नीचे तेरी निग्गी बुकल च आखरी नींद सोना है। मैं जानती हाँ कि मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मैं जानती हाँ कि मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। बहुत उदास है। धन्यवाद।
1: ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਗਿਓ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਬੇਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਥੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਰੁਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੁਸੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ।
2: ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਰੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੱਕ ਦੇ ਗਿਓ ਨੈਣਾ ਨੂੰ

0: उम्र पर महका जान दे।
1: बहुत
0: लो जी, ये
1: बढ़िया,
0: सी सूफी कलाम
1: थैंक यू
0: ते
1: जी,
0: एक
1: थैंक यू।
0: सॉन्ग जड़ा जल्दी जल्दी गुनगुनाना ना जे तारी इजाजत होवे
1: जरूर
0: ते।
1: जरूर, आउण
0: हाँ
1: दिओ
0: जी
1: आउण
0: जी
1: दिओ
0: जी
1: जी।
0: जी जी

0: वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब
1: अच्छा
0: बहुत खूब।
1: शुक्रिया
0: थैंक यू जी, थैंक
1: शुक्रिया
0: यू मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते दोस्तों
1: शुक्रिया
0: ये सन अपने नाल दुबई तो मोहम्मद जी गलबात करके गए ने, नाल गीत सुना के गए ने, ते पाश उन्हां दा अज दिन है, उन्हां दी रचना भी मैं अगे जाके सांझी करन दी कोशिश करदा, पर नाल नाल इक रचना उन्हां दी छोटी जिही नजम जड़ी सांझी करन जा रहा, हसरत। जिंदगी जिंदगी तू मैनू इंज परचाउण दी कोशिश ना कर, ए वरिया दे खिडौने बहुत नाजुक ने, जिन्हों भी हाथ लावा टुकड़िया दे विच खिंड जांदा है, हुण इना मूँह चढ़ाउंदे टुकड़िया नूं उमर की कनाक देवा। अड़िए कोई तां टुकड़ा समय दे पैर दे विच वज के फर्श नूं लाल कर देवे। ते लो दोस्तों इसे तरह दीआं गल्लां बातां पाह जी दी बड़ी चर्चा दे विच रही, एक नज़म है वह भी तुहाडे नाल जांदे जांदे सांझी करांगे। ते ओ बाकमाल जड़ी नज़म हुंदी है सुफ़नियां दा मर जाना, ते ओ भी कोशिश करांगे तुहाडे नाल सांझी करांगे अगे जाके। ते लाइनां तुहाडे लई खुल्लियां ने, +358 44 976 1962 स्टूडियो दा नंबर है। ते उस तो पहला विदेशी खबरां ने कुछ उन्हां दा जिक्र करदे हां, ते नाल नाल अमेरिका दी भी गल करांगे, ते जो दुनियादारी दे उत्ते हालात बढ़ रहे उन्हां दे वल नूं चलदे हां। आरएसएस मुखी मोहन भागवत दी लंदन दे विच जिहड़ा गुरद्वारा फेरी दे विच विरोध दे विचकार समर्थन दे विच आया, जिहड़ा प्रमुख सिख शख्सियतां ने एक पासे विरोध हो रहा ते दूसरे पासे आपणे ही जिहड़ा उन्हां दा साथ निभा रहे है। कौमी स्वयं सेवक सेवक जड़े ने संघ आरएसएस दे 100 साल स्थापना वरे दे कौमांतरी प्रचार दे दौरे ते लंदन दे इतिहासक खालसा जत्था ब्रिटिश आइल्स गुरद्वारा विखे जड़ा संघ मुखी डॉक्टर मोहन भागवत दी जड़ी है फेरी नूं लैके जिथे विदेशी सिख जथेबंदियां दे वल्लों विरोध कीता गया, उत्थे प्रमुख सिख शख्सियतां इस दे समर्थन दे विच वी आईआं ने। उद्योगपति अते राजसभा मैंबर जड़े ने विक्रमजीत सिंह सानी ते ब्रिटिश भारती कारोबारी ते समाज सेवी प्रोफेसर पीटर विरदी हरदीप सिंह विरदी जड़े ने उन्हां ने इस फेरी दा बचा कीता है। सिख फैडरेशन अते इंडियन वर्करज एसोसीएशन वर्गे विदेशी समूहां ने गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की सख्त निंदा कीती सी, ते इस तों इलावा साउथ एशियन जड़ा सोलीडैरिटी ग्रुप हैगा उहदे वल्लों लंदन दे पार्लीमेंट स्क्वेयर दे विच जड़ा रोस प्रदर्शन भी कीता। इस तों पहलां गुरद्वारा साहिब दे प्रधान गुरप्रीत सिंह आनंद ने स्पष्ट कीता कि मोहन भागवत केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नतमस्तक होण दे लई इक श्रद्धालू वजों आए ने। राज्यसभा मैंबर विक्रम सिंह सानी ने जड़ा एक्स दे उत्ते एक पोस्ट पाई कि इस विरोध प्रदर्शन ते डूंघे दुख दा प्रगटावा कीता। उन्हां कहा कि आर एस एस मुखी एक श्रद्धालु वजो आए सन ते उन्हां ने रुमाला साहिब भेट कीता ते सानी ने लिखिया कि साडे गुरुआं ने सरबत दे भले दा संदेश दिता है ते गुरु दे दरबार दे विच श्रद्धा दे नाल आउण वाले हर इंसान दा स्वागत कीता जांदा है। जेकर कोई मतभेद हन भी तां उन्हां दा हल गल्लबात दे नाल होणा चाहीदा है, हंगामे दे नाल नहीं। उन्हां उदाहरण दिंदिया कहा कि जदों राहुल गांधी 1984 दे दुखां

हर एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल,

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने।